0: और मैं पाचू
1: इटियो और रेडियो पियम ये करे वेर क्वारो
0: और मैं पाचू
1: इटियो और रेडियो

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनियो और रेडियो इमारा पांका वाकिमियार के लिए।